0: आजाद इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप गीत। और साथियों आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन। और घर आंगन कार्यक्रम की एक विशेषता है जो हमने शुरू की है आपके लिए प्रश्नावली के रूप में। और आज का प्रश्न है आपके लिए जिसके संदेश आपको भेजना है fmgoldga@gmail.com पर। और वो प्रश्न है कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के लिए आपको सबसे पहले बहाने याद आ जाते हैं।
1: और कुछ बहाने भी आए हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आई हैं। तो

आपको बता दें कि उनका जन्म 14 जुलाई 1917 को हुआ था। कम उम्र में ही उनका रुझान संगीत की तरफ था और उन्होंने संगीत में शिक्षा भी प्राप्त की। 1940 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के कार्यक्रम निर्माता ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने रोशन को एसराज बजाने के लिए भी नियुक्त किया था। हालांकि 1948 में रोशन एक संगीतकार के तौर पर काम खोजने के लिए मुंबई पहुंच गए थे और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी छोड़ दी थी। और वहां पहुंचने के बाद उनका संघर्ष, उनका सफ़र जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत मेहनत की, संघर्ष किया और इस दौरान संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक भी बने। और 1950 में फिल्म आई बावरे नैन, जिसका संगीत बेहद पसंद किया गया था और ये फिल्म बड़ी म्यूजिकल हिट भी बन गई थी। उसके बाद रोशन साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई फिल्मों में उन्होंने सुपरहिट संगीत दिया। 1960 में वो दौर आया जब रोशन म्यूजिक की दुनिया में दीपक की तरह रोशन हुए।

जी हाँ, कलाकार बेमिसाल के जरिए आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार रोशन की। और अभी आपने ये जो गीत सुना, उन्हीं के संगीत से सजा हुआ ये गीत था, आशा भोसले जी की आवाज़ में, और फिल्म थी दिल ही तो है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, और फिल्म थी आरती। आपको बता दें कि कलाकार बेमिसाल के ज़रिए आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार रोशन की। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 1960 का दशक रोशन साहब के लिए स्वर्ण युग साबित हुआ था। इस दौरान रोशन साहब ने बरसात की रात, आरती, ताजमहल, चित्रलेखा, ममता और देवर जैसी फिल्मों को संगीत दिया। खास तौर से गीतकार साहिर लुधियानवी के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था। बरसात की रात, ताजमहल, ममता, अनोखी रात जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनकी जुगलबंदी दिखाई दी। तो चलिए फिलहाल बरसात की रात फिल्म से ये सुपरहिट कवाली आप सभी के लिए। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

मिरी में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 15 तारीख दिन है बुधवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तेंजिन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री कामे यंगफो और श्री लामसरिंग, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री हेमंता स्वर्गिरी और सुश्री शिखा डेका, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री थुतन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: ऑफ द रिवर। सविता पारीक, आकाशवाणी न्यूज, पटना।
1: And in sports, in FIFA Cup football, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final tonight at Atalanta Stadium in US. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Last night, Spain stomped into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash in Texas last night. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction in eroding global public confidence, and red alert for heavy rain in Odisha today. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन। समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान। आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर

0: भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉ राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉ सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
5: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
4: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान की बिजली

0: संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमरीका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार

0: समझौता आज से लागू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद हिंदी भजन। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

गुलशन कुमार प्रस्तुत इन्हीं भजनों के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जुबिनगर और नीलिमा खातून के आवाजों में चंद आसामिया नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत जुबिनगर और नीलिमा खातून से चंद आसामिया नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: जुबिनगर और नीलिमा खातून के इन्हीं आसामिया नगमों के साथ ही कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के 5वीं सत्र की छात्रिका कुमारी लोपसांग यांकी से छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता विषय पर एक वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम लोपसांग यांकी है और मैं दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग में 5वीं सत्र की छात्रा हूँ। आज मैं एक प्रासंगिक विषय छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और हम इस पर हर पल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे पढ़ाई हो, खेलना हो, सोशल मीडिया हो या वीडियोस देखना। लेकिन इस सुविधा के साथ ही कुछ खतरे भी जुड़े हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर लिंक, हर मैसेज, हर फाइल या हर फ्रेंड रिक्वेस्ट सुरक्षित नहीं होती और कभी कभी हम सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान ला सकती है। हैकर्स, वायरसेस, फिशिंग और फेक प्रोफाइल्स हमेशा छुपे होते हैं और एक पल की लापरवाही से हमारा व्यक्तिगत डेटा, हमारे पासवर्ड्स और तस्वीरें सब खतरे में आ सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जानकारी हमेशा सुरक्षित रखो और अनजान व्यक्तियों के साथ कभी शेयर मत करो। मजबूत पासवर्ड्स का इस्तेमाल करो और OTP या वेरिफिकेशन कोड्स कभी किसी के साथ शेयर मत करो, चाहे वो व्यक्ति कितना ही भरोसेमंद क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले हमेशा सोचो, क्योंकि जो चीज मजाक लगती है या अहानिकारक लगती है वो कभी कभी गलत समझ या परेशानी बना सकती है। और हमेशा याद रखो कि ऑनलाइन भरोसा समझदारी से करने ही सुरक्षा का पहला कदम है। अगर कोई अनजान व्यक्ति संपर्क करता है या कुछ भी संदिग्ध दिखे, तुरंत किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताओ और कभी भी अनजान लोगों से दोस्ती मत करो। साइबर बुलिंग को हल्के में मत लो, क्योंकि ऑनलाइन अपमान, ट्रोलिंग या हिंसा भी उतनी ही सच्चा और हानिकारक हो सकती है जितनी सामने से होती है। और अगर तुम्हें या किसी और को परेशानी हो रही हो, चुप मत रहो, सबूत संभाल कर रखो, व्यक्ति को ब्लॉक करो और भरोसेमंद वायस्क से मदद लो। हमेशा सतर्क रहो, संदिग्ध लिंक्स और पायरेटेड डाउनलोड से दूर रहो और समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करो, क्योंकि एक छोटी सी गलती ही तुम्हारी डिवाइस और व्यक्तिगत जानकारी को खतरे में डाल सकती है। इंटरनेट एक शक्तिशाली औजार है और इसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल ही हमेशा हमें और दूसरों को सुरक्षा दे सकता है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखो, हमेशा सोचो, हमेशा सतर्क रहो और हमेशा समझदार रहो, ताकि हम डिजिटल दुनिया का लाभ ले सके बिना किसी खतरे के। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के 5वीं सत्र की छात्रिका कुमारी लोपसांग यांकी से छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता विषय पर एक वार्ता। इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब समाप्त होता है।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। श्रोताओं, सुनिए महिलाओं पर आधारित गीतों।

कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला नगमा सुनिए दोस्ताना फिल्म से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की आवाजों में, बोल कुमार के और संगीत विशाल शेखर का।

अगला नगमा सुनिए मोनाली ठाकुर की आवाज में। महाराज फिल्म के इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत से सवारा है सोहेल सेन ने।

निर्जातन सभी आप सुन रहे थे प्रसून जोशी का लिखा नगमा, स्वर कविता सेठ और अर्चना गोरे के और संगीत विशाल खुराना का। श्रोताओं, नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए वेकअप सेठ फिल्म से कविता सेठ की आवाज में। गीतकार जावेद अख्तर और संगीत दिया है शंकर एजान लॉय ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन की आवाज में, बोल गुलजार के और संगीतकार ए आर रहमान।

नीरज श्रीधर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे तुम मिले फिल्म का नगमा, गीतकार कुमार और संगीत प्रीतम का। अगला नगमा सुनिए क्रूप फिल्म से निखिल डिसूजा की आवाज में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नव गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है थैंक गॉड फिल्म से जुबिन नौटियाल की आवाज में, बोल रेशमी विराग के और संगीतकार तनिष्क बख्शी।

जब भी मैं एक फिल्म से भी आप सुन रहे थे इरशाद कामिल का लिखा नगमा, स्वर मोहित चौहान के और संगीतकार प्रीतम। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए शिवाय फिल्म से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में, बोल सईद कादरी के और संगीतकार मिथुन।

बॉडीगार्ड फिल्म से पेश है अगला नगमा एश किंग और क्लिंटन सेरियो की आवाजों में। प्रीतम द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है निलेश मिश्रा ने।

अंतिम नगमा जावेद अली, कीर्ति सागतिया और पूजा एवी की आवाजों में, बोल इरशाद कामिल के और संगीत एआर रहमान का। इसके साथ ही श्रोताओं, फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन। राग है मध्यालय तथा तबले पर संगत दिया है श्री दुर्गा प्रसाद ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मध्यालय राग पर रोनू मजुंदर से बांसुरी वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नीति नई गति मिलेगी। एनएसई ने डॉलर के तहत मई और जून 2026 के दौरान मध्य प्रदेश की प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 19 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की। राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष केंद्रीय बाढ़ राहत पैकेज की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही नुकसान के लिहाज से 1950 के भूकंप के बाद की स्थिति से भी अधिक गंभीर। निशेलिस्ट सोसाइटी ने पापुमपारे जिले के तोड़ो सर्कल के अंतर्गत होज ताकते गांव में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 5 लाख रुपए का योगदान दिया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत नॉर्वे हरित साझेदारी के तहत देश की पहली रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोंस्ट्रेशन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नॉर्वे की कंपनी टाइडल सेल एएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोअर सुबनसिरी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू की गई रोग प्रतिरोधी टमाटर की किस्म अकारा भेद किसानों के अधिक उत्पादन, कम लागत और बेहतर आय का माध्यम बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। और अमेरिका के टेक्सस स्थित ग्लास स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियंस अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगी, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब 0 हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर परिषद एनएसी ने केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डॉनर के तहत मई और जून 2026 के दौरान स्कीम्स ऑफ एनएसी, सोनेक तथा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम नेसिट्स के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 19 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की है। यह धनराशि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आजीविका तथा सड़क संपर्कों को सुदृढ़ करने में उपयोग की जाएगी। प्रमुख परियोजनाओं में अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग जिला अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल, दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रावास, सापारिचो कीचो में पर्यटन परिसर, दिरांग में परसिमन प्रसंस्करण केंद्र तथा खारसांग में सुपरमार्केट सह पार्किंग सुविधा का निर्माण शामिल है। एनएसी ने नेसिट्स के तहत राज्य में सड़क सुविधाओं परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की है। नाचो बैकवर्ड ब्लॉक विकास परियोजना को पूरा किया है और ईस्ट नेस्ट ईगल फेस्ट को भी सहयोग दिया है। राज्यसभा सांसद ताई

0: विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष केंद्रीय बाढ़ राहत पैकेज की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही, जनधन, आजीविका और आधारभूत संरचना के नुकसान के लिहाज से 1950 के भूकंप के बाद की स्थिति से भी अधिक गंभीर है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि राज्य के कई पान्योर, सियांग क्षेत्र, कुरुंकुमे, तिराप सहित कई जिलों में भारी तबाही हुई है और लगभग 15 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक आंकलन के अनुसार 85,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई है तथा राज्य के सभी 28 जिलों में 1,00,000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि यह आपदा राज्य की वित्तीय क्षमता से कहीं अधिक है और केंद्र सरकार ने शीघ्र सहायता, क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की तत्काल बहाली तथा स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। निशेलित सोसाइटी एनईएस ने अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के तोरू सर्कल के अंतर्गत होंच डाकते गांव में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 5,00,000 रुपए का योगदान दिया है। एनईएस सेक्रेटरी इंजीनियर नाबम ताकार ने के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल द्वारा यूपीआई में उपस्थित उपायुक्त लोपसांग शेरिंग को चेक सौंपा गया है। श्री ताकार ने राहत कार्यों में जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए समाज की ओर से हर संभव सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। इससे पहले एनईएस ने कई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावितों को राहत के लिए भी 10,00,000 रुपए की सहायता प्रदान की थी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत नॉर्वे हरित साझेदारी के तहत देश की पहली 500 किलोवाट क्षमता वाली रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोंस्ट्रेशन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नॉर्वे की कंपनी टाइडल सेल एएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता अरुणाचल प्रदेश सरकार के सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज CESNHS और टाइडल सेल एएस के बीच किया गया है। परियोजना का उद्देश्य बिना बड़े सिविल ढांचे के नदी की प्राकृतिक धारा से सीधे बिजली उत्पन्न करना, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में सर्वोच्च ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री दासांगलोपुल ने इसे राज्य के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू की गई रोग प्रतिरोधी टमाटर की नई किस्म अर्का अभेद किसानों के लिए अधिक उत्पादन, कम लागत और बेहतर आय का माध्यम बन रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR द्वारा विकसित इस किस्म का वर्ष 2023 में किसानों के खेतों पर परीक्षण किया गया था, जिसके बाद वर्ष 2024-25 में इसे फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन के तहत व्यापक स्तर पर अपनाया गया है। ये किस्म टमाटर की 4 प्रमुख बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है तथा जिले में आर्द्र जलवायु में बेहतर प्रदर्शन करती है, जिससे कीटनाशकों और श्रम लागत में कमी आती है। इसके उत्पादन क्षमता स्तर में 75 टन प्रति हेक्टेयर से है और किसानों को बाजार में बेहतर मूल्य भी मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। आज नई दिल्ली में सोश्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को विकसित स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र को अपनाने का योगदान देने के लिए भी आग्रह किया है।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह भी किया है।
1: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डलास में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने आका किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास खटा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए श्रोताओं, पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लरिम में सुनिए लामा रिंचन सेवांग, गेलोंग जम्पा तेंदर और लामा नीमा सिरिंग के आवाजों में बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर सुनिए हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमीय तराने में सुनिए केसरी फिल्म का एक देशभक्ति नगमा।

रात्रि 8 बजे आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 16 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाना की तरह कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए अनूप चलोटा के आवाज में चंद हिंदी भजन, हिंदी भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद बंगाली फिल्मी नगमों का आनंद लीजिए लता मंगेशकर के आवाज में कल दोपहर 3 बजे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर महिलाओं पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए राबता फिल्म से अरिजीत सिंह, जबरिया जोरी फिल्म से यासर देसाई और अल्तमाश फरीदी, केदारनाथ फिल्म से अरिजीत सिंह और अजीज कौर, सूर्यवंशी फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन, केसरी फिल्म से अजीज कौर और अरिजीत सिंह, ये जवानी है दीवानी फिल्म से तोची रैना, रेखा भरद्वाज, अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर, ए जेंटलमैन फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल, माय नेम इज खान फिल्म से राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा, और मौसम फिल्म से शाहिद मालिया के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:50 पर। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से खयाल कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मुनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए महामहिम टुल्कू तेंजिन गिरमे रिम्पुचे जी से आचार्य शांति देवा द्वारा रचित बोधिसत्व के जीवन मार्ग पर आधारित शिक्षाओं की श्रृंखला का शेष भाग कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम दैंगदुख समा लेरिम सेरा शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम शेदोन लेरिम में सुनिए लामा थुपतेन वांगचू और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 बजे तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के 5वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी डोंडुप वांगमु दोंगे से एक हिंदी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक में सुनिए किस्मत फिल्म से आशा भोसले और शमशाद बेगम, पेइंग गेस्ट फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले, गराना फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले, तुम्हारी कसम फिल्म से मुकेश और आशा भोसले, बातों बातों में फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले, तेरे दिल तेरा दीवाना फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले के आवाजों में गायिका आशा भोसले द्वारा अन्य गायकों के साथ गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल शाम 7:11 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए 83 फिल्म का एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 बजे आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9

जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम चरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

Sibetolera, Jorora.

제

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना

0: मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसावां डांगो आपोसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जाहरिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the Cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the Cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.
0: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम,
3: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद एन टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। द स्कीम प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक सोर्सिंग एज इंडिया हैज नाउ डेवलप्ड अ स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड मेनी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। अंडर द स्कीम क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन वर्थ अराउंड 39 लाख करोड़ रुपीस इज एक्सपेक्टेड एंड अराउंड 60,000 न्यू डायरेक्ट jobs will be created.
0: 60,000 direct jobs nay create honge.
2: In other major decisions, the government gave nod to the development of an over 43-kilometer long, 6-lane and 4-lane elevated corridor connecting National Highway 31 and the Varanasi Ring Road along the river Varuna for decongestion of Varanasi city in Uttar Pradesh. The cabinet also cleared a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers.

दोस्तों, जिंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना जोड़ती है। कुछ पन्ने खुशी से भरे होते हैं तो कुछ संघर्ष से, लेकिन पूरी किताब ही हमारे अस्तित्व की कहानी होती है। आकाशवाणी तवंग से प्रसारित कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी सुनने वाले आवाज की दुनिया के तमाम दोस्तों को सिटी म्याचिन का नमस्कार। दोस्तों, हमारे आज के हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ तकनीकी सहयोगी है हेमंता सौरगरी और शिखा देगा। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुनते हैं हम ये पहला फोन किस श्रोता ने और कहाँ से किया है। हेलो, नमस्कार।

0: हेलो नमस्कार
1: नमस्कार
0: जी,
1: मैं रमेश पात्रा आपसे बात कर रहा हूँ गोलाघाट असम से।
0: जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश पात्रा जी। और बताइए, आज मैं आपको कौन सा गीत पेश करूँ?
1: दिल का रिश्ता।
0: जी, दिल का रिश्ता फिल्म का कौन सा नगमा आप सुनना चाहेंगे?
1: वही ना, दिल का रिश्ता। बड़ा
0: जी जी, जरूर सुनवाएंगे इस गीत को।

0: और सर आपके साथ इस गीत को सुनने वाले और कोई दोस्त आपके साथ आज है?
1: जरूर है
0: जी, जी।
1: मेरा साथ है, मेरा श्रीमती है रोनू पात्रो
0: जी,
1: पांकुर पात्रो, और दोस्त है अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, आयकन मुंडा, देवासी हजारिका, सौरव द्वारा, और बहुत सारे साथी है, सभी को डेडिकेट करता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, जरूर डेडिकेट करेंगे आपकी ओर से हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता है उन सभी को। और रमेश पात्रा जी, आपके वहाँ पे जो मौसम है वो किस तरह का है अभी?
1: मौसम इतना अच्छा नहीं है, बारिश हुआ नहीं, धूप चल रहा है
0: जी,
1: बारिश इतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, धान के खेत में पानी कम है, नॉर्थ साइड में तो बारिश चल रहा है।
0: जी जी, हमारे अरुणाचल साइड में तो अभी बारिश की वजह से सभी की स्थिति बहुत ही खराब है, कई जगह पर बाढ़ आने की वजह से बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो बारिश लगातार हो रही है कुछ दिनों से। जी चलिए ठीक है, तो मैं आपके फरमाइश को पेश करती हूँ रमेश पात्रा जी।
1: थैंक यू
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नमस्कार
1: हेलो देश दिले
0: बिमले टोला लस नसियाला
1: सबदी जुरि फोन नि हुयाला
0: लस नसियाला जि सम फिगो सिनला
1: नि सम मेने प्यार किया यो
0: लस मेने प्यार किया फिल्म कसम गतिन फिगो सिनला
1: गदि नि ना गति मरम
0: लस सला लस इजिक नसियाला एना देखो सम सन गन देश त पुना सुसु निला
1: सम यान यान जि रिंगिन दमा मेरम तेशियांग गो मेरम पदा फैलाम मेरम छुगु मेरम इंस्टेम इजि फुनजु सार बियो सार लोकडाउन देश
0: Let's go.

0: हेलो नमस्कार
1: हेलो किस दिन ला मैडम
0: टेज दिले ला
1: समझी शुरू ला
0: लेसुल ला गंदा कित का सुर रंजन खंडुला नांग दोइना ला
1: ओ इन इन ला मैडम लेस शंबा
0: मेरे काम पोछा मनी ला जग गंदा कित का नया काम कम दो जुना मना ला
1: काम रे मामी ला दे जग
0: लेस नांग सी ला सिसम फिर उस इन ला रंजन खंडुला देश अब चमन में तो चमन ओटो मिला रे ने में
1: I'm going to go to the next one.
0: Lasula, teacher, now.

0: हेलो नमस्कार,
1: कैसे हैं आप?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सब कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, मैं भाईकन मुंडा बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सराय जैसलमेर असम से।
0: जी जी भाईकन मुंडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और बताइए, आज मैं कौन सा गीत सुनाऊँ आपको?
1: फिल्म का नाम है आओ प्यार करें।
0: जी, और गीत के बोल?
1: गाने का बोल है चांद से पर्दा कीजिए,
0: जी
1: चुरा ला चेहरे का लोग। और हम यहाँ चांद से तो पर्दा नहीं, लेकिन हम लोग ना ये सूरज से पर्दा कर रहे हैं, ताकि चेहरा काला ना हो जाए। इतना तेज धूप है ना, तो हम लोग सूरज से अब पर्दा कर रहे हैं।
0: जी जी बिल्कुल, अभी सूरज तो दुनिया का अब एक बोला जाए तो एक भगवान की तरह है, अगर

0: सूरज ना हो तो हमारा जो खाना पीना हवा सब बंद हो जाएगा, लेकिन कभी कभी सूरज से पर्दा भी करना चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा सके, तो बहुत जरूरी है। और
1: अभी मौसम कैसा है तवांग का?
0: तवांग का मौसम तो फिलहाल खराब ही है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है कुछ दिनों से। दिन में थोड़ा ठीक है लेकिन शाम को बहुत ज्यादा बारिश हो रही है।
1: यहाँ भी कल रात बारिश हुआ था, अभी दिन में तो ऐसा नहीं है लेकिन दो तीन दिन पहले
0: जी
1: आज तो थोड़ा कम है। कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा।
0: जी जी जरूर बताइए।
1: अमल बसुमतारी, कुमार बसुमतारी, रावत पत्र अरुण पत्र राखी, दीपेंद्र राउत की, अंजलि बसुमतारी, दरअसल बसुमतारी, जितने भी अभी सुन रहे हैं सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी चलिए ठीक है, तो बाइकन मुंडा जी मैं आपकी फरमाइश को पेश करती हूँ।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।

जी हाँ दशरथाओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हर बुधवार की सुबह 10 बजे हमें इस मोबाइल नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 6033914908। इसी जानकारी के साथ ही अब आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी अभी पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय और इसी दिन। तब तक के लिए तकनीकी सहयोगी हेमंता सुरगरी और शिखा टेका के साथ अपनी दोस्त सिटी मैचिंग को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम को संचालित एवं प्रस्तुतकर्ता थे सिटम यांगचिन। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापारिक समझौता CETA तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता दोनों देशों की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि CETA से भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी तथा विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटेन के बाजार तक बेहतर पहुँच प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह समझौता प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को भी और मजबूती करेगा, साथ ही कुशल भारतीय पेशेवरों की आवाजाही को भी बढ़ावा देगा। पूर्वोत्तर परिषद NEC ने केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर के तहत मई और जून 2026 के दौरान स्कीम्स ऑफ NEC सोनिक तथा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम NECs के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 19 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की है। यह धनराशि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आजीविका तथा सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने में उपयोग की जाएगी। प्रमुख परियोजनाओं में अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग जिला अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल, दिरांग में परसिमन प्रसंस्करण केंद्र तथा खारसांग में सुपरमार्केट सह पार्किंग सुविधा का निर्माण शामिल है। राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष केंद्रीय बाढ़ राहत पैकेज की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही, जनधन, आजीविका और आधारभूत संरचना के नुकसान के लिहाज से 1950 के भूकंप के बाद की स्थिति से भी ज्यादा अधिक गंभीर है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया है कि राज्य के कई पान्योर, सियांग क्षेत्र, कुरुंकुमे, तिरप सहित कई जिलों में भारी भारी तबाही के और लगभग 15 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक आंकलन के अनुसार 85,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई है तथा राज्य के सभी 28 जिलों में 1,00,000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। कुरुंकुमे जिला प्रशासन ने गत 13 जुलाई को आए फ्लैश फ्लड में एक महत्वपूर्ण पुल बह जाने के कारण कट गए रणनीतिक महत्व के सीमावर्ती क्षेत्र दामिनहोरी के संपर्क बहाल कर दिया है। उपायुक्त सिचुंग चोखो के नेतृत्व में जिला प्रशासन

0: 85th RCC के अधिकारी कमांडिंग और उनकी टीम के समन्वय से तत्काल बहाली अभियान शुरू किया। लगातार बारिश, दुर्गम भूभाग और प्रतिकूल मौसम के बावजूद कर्मियों ने दिन रात कार्य कर एक स्थायी लकड़ी का पुल तैयार किया है, जिससे लोगों और आवश्यक सामग्री की आवाजाही फिर से शुरू हो चुकी है। गत 28 जून को आए फ्लैश फ्लड से क्षतिग्रस्त हुए अवसंरचना की मरम्मत के बाद ईस्ट सियांग जिले के लसिंग मेगा जल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत लेदुम और बेलात गांव में आज से पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। मिरम, निकोंग, निकलोक, मोरलुंग, रुक्सिन और ओयान सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी बहाली कार्य जारी है, जिसके अगले 2 से 3 दिनों में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत नॉर्वे हरित साझेदारी के तहत देश की पहली 500 किलोवाट क्षमता वाली रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोंस्ट्रेशन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नॉर्वे की कंपनी टाइरल सेल एएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता अरुणाचल प्रदेश सरकार के सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज CESNHS और टाइरल सेल एएस के बीच हुआ है। परियोजना का उद्देश्य बिना बड़े सिविल ढांचे के नदी की प्राकृतिक धारा से सीधे बिजली उत्पन्न करना, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों क्रातादी, कमले, अपर सुबनसिरी, शिओमी, सियांग और अपर सियांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही पापुमपारे के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन अपसु के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य भर में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की निगरानी के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उपाध्यक्ष प्रोटोकॉल नामम गांधी की अध्यक्षता वाली यह समिति पुनरीक्षण प्रक्रिया के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी, जिला छात्र संघों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी, प्रक्रियागत अनियमितताओं की पहचान करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रशासनिक त्रुटियों के कारण कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। और लोअर सुबनसिरी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू की गई रोग प्रतिरोधी टमाटर की नई किस्म अकारा अभेद किसानों के लिए अधिक उत्पादन, कम लागत और बेहतर आय का माध्यम बन रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR द्वारा विकसित इस किस्म का वर्ष 2023 में किसानों के खेतों पर परीक्षण किया गया था, जिसके बाद से वर्ष 2024-25 में इसे फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन के तहत व्यापक स्तर पर अपनाया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, न्यूज रेड बाय नारांग कोयांग। Prime Minister Narendra Modi said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement and the Agreement on Social Security, which came into force today, are a significant moment in the partnership between India and the United Kingdom. Modi added that it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs, along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. He noted that it will also deepen cooperation in technology, professional services and innovation while supporting greater mobility for skilled Indian talent. On the Agreement on Social Security or the Double Contribution Convention coming into effect today, the Prime Minister said it will provide invaluable support to Indian professionals working temporarily in the UK and strengthen the competitiveness of Indian enterprises. The Union Cabinet today approved 2 elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh, worth over 25,400 crore rupees to ease traffic congestion and improve connectivity between national highways and the city's ring road. The Cabinet also approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Briefing the media, Union Minister Ashwini Vaishnaw said the initiative builds on the success of Semicon 1.0 and aims to further position India as a global semiconductor hub. The Cabinet also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The notice, Eastern Council under the Ministry of Donor has released over 19.03 crore rupees during May-June 2026 for key developmental projects in Arunachal Pradesh under schemes of NEC and the Northeast Special Infrastructure Development Schemes. The funds will support healthcare, education, tourism, livelihoods and road connectivity. Major initiatives include a nursing hostel at Inkyong District Hospital, a girls' hostel at Donipolo Government College,

बीप्राक के देशभक्ति नगमे के साथ ही कार्यक्रम कौमी तराने अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब सुनिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है मुक्तो तवांग से छांगपा लामा दोर्जी रिंचिन ग्रुमा दोर्जी खांडू थ्रिंग दोर्जी और दावा छोटुन ने। आप सभी की फरमाइश पर पेश है प्रेम पर्वत फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत, बोल जन निसार अख्तर के और संगीत जयदेव वर्मा का।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है पैगाम लो से तंजन सोमू फुनसो जाम्बे छोटन कर्मो रिंचिन लामू और फुनसो वांगू से प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म के नगमे का। इस नगमे को लिखा है इंदिवार ने, गाया बप्पी लहरी और आशा भोसले ने, और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। उर्गिलिंग विकास नगर तवांग से लोपसांग टेंडा के फरमाइश भी प्रस्तुत है हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर का गाया गीत। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है रवि ने।

अगला नगमा सुनिए, मोरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह के फरमाइश पर धर्मात्मा फिल्म से मुकेश और कंचन का गाया नगमा, बोल इंदवार के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है वेस्ट जलालाबाद से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है सीमा फिल्म से मना डे का गाया गीत। शंकर जयकिशन द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

श्रोताओं, भी अब आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने आज 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं फीफा विश्व कप के रोमांच के साथ, जो अपने चरम पर पहुंच चुका है या चरम की सीमाओं को भी पार कर चुका है। अब विश्व कप में महज 3 मुकाबले बचे हैं और हर मुकाबला तय करेगा इस विश्व कप का विजेता कौन होगा। इसी कड़ी में आज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे से खेला जाना है। आइए जानते हैं इस अहम मुकाबले में किस टीम का पलड़ा कितना भारी है।
1: अटलांटा स्टेडियम में आज डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच फीफा विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां इस बात का फैसला होगा कि फीफा विश्व कप के फाइनल में कौन सी टीम स्पेन से मुकाबला करेगी। ये मैच विश्व कप का सबसे रोमांचक मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना है और दूसरी तरफ मजबूत इंग्लैंड। दोनों टीमों के बीच देखने को मिलेगी लियोनेल मेसी वर्सेस केन बेलिंघम की राइवलरी। दोनों टीमों के अब तक के अभियान पर नजर डालें तो अर्जेंटीना ने ग्रुप जे में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया था। इसके बाद अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे को 3-2 से, फिर प्री क्वार्टर फाइनल में शानदार वापसी करते हुए मिस्र को 3-2 और क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया था। टीम की सबसे मजबूत कड़ी लियोनेल मेसी हैं, जो अब तक विश्व कप में 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस को लीड कर रहे हैं। वहीं अर्जेंटीना के सामने इंग्लैंड की टीम होगी, जो ग्रुप एल में शीर्ष पर थी। इंग्लैंड ने राउंड ऑफ 32 में शानदार वापसी करते हुए डीआर कांगो को 2-1 से पटकनी दी थी। प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको को 3-2 और क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराया था। इंग्लैंड ने इस विश्व कप में दबाव की स्थिति में शानदार वापसी की क्षमता दिखाई है। अर्जेंटीना के लिए उसकी मुख्य ताकत मेसी रहने वाले हैं, जिनको अगर मिडफील्ड से मैक एलिस्टर, एंजो फर्नांडिस और डी पॉल का बखूबी साथ मिलता है तो टीम 1962 के बाद लगातार 2 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन सकती है। वहीं इंग्लैंड के अटैक में केन

0: बेलिंगहम, साका और गॉर्डन जैसे करिश्माई खिलाड़ी हैं। अगर दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड ने 6 और अर्जेंटीना ने 3 मैच जीते हैं, जबकि 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीमों के आंकड़े और संतुलन से एक बात तो स्पष्ट है कि फुटबॉल प्रेमियों को आज रात एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक रोमांचक मुकाबला फुटबॉल प्रेमियों का आज रात इंतजार कर रहा है, और एक ऐसा ही मुकाबला खेला गया कल, जहां स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। स्पेन ने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हराकर विश्व कप के खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
2: स्पेन फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। ये दूसरा मौका है जब स्पेन विश्व कप फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले टीम ने साल 2010 में फाइनल का टिकट हासिल किया था और खिताब भी अपने नाम किया था। टेक्सास के डलास स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत में फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और किलियन एम्बाप्पे ने स्पेन के डिफेंस पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि मुकाबले में पहली सफलता स्पेन के हाथ लगी जब 19 वर्षीय लामिन यमाल को रोकने के प्रयास में फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्ने फाउल कर बैठे, जिसके चलते स्पेन को पेनल्टी मिली। मैच के 22वें मिनट में मिकेल ओयरजाबल ने बिना कोई गलती किए पेनल्टी को गोल में तब्दील करते हुए स्पेन को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद फ्रांस ने पहले हाफ में बराबरी करने की काफी कोशिशें की, लेकिन टीम स्पेन के मजबूत डिफेंस को नहीं भेज सकी। दूसरे हाफ में पूरी तरह से स्पेन का दबदबा मैच पर देखने को मिला। मैच के 58वें मिनट में स्पेन के पेड्रो पोरो ने शानदार गोल करते हुए स्पेन की बढ़त को 2-0 कर दिया। फ्रांस के कोच ने डेजिरे डुए और रयान चेरकी को मैदान पर उतारकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एम्बाप्पे ने कई बार स्पेन के डिफेंस को भेदने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन उनके आगे चट्टान की तरह खड़े नजर आए। फ्रांस की टीम निर्धारित 90 मिनट में कोई गोल नहीं कर सकी और स्पेन ने मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। खिताबी मुकाबले में अब स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा, जबकि फ्रांस की टीम तीसरे स्थान के लिए मुकाबला करेगी। रिपीट, जबकि फ्रांस की टीम तीसरे स्थान के लिए खेलेगी। फ्रांस का सामना दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली टीम से होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो 48 टीमें थी, 104 मुकाबले खेले जाने थे। अब 101 मुकाबले हो चुके हैं, 3 बचे हैं, और अगर साथ साथ देखा जाए तो गोल्डन बूट की रेस भी उतनी ही ज़्यादा दिलचस्प हो गई है जितनी ही खिताबी दौड़ है, जहाँ पे एम्बाप्पे 8 गोलों के साथ शीर्ष पर हैं और मेसी भी 8 गोलों के साथ हैं। हालांकि कल के सेमीफाइनल में एम्बाप्पे कोई गोल नहीं कर सके और उनकी टीम फ्रांस का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में आज बहुत अच्छा मौका होगा मेसी के पास कि वो अपनी टीम के लिए गोल करें और टीम को जीत भी दिलाएं, साथ ही गोल्डन बूट की अपनी दौड़ को और मजबूत करने का काम करें। और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां भारत ने आखिरकार इंग्लैंड दौरे पर विजय शंखनाद कर दिया है। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। बर्मिंगम के एजबिस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड के 259 रन के लक्ष्य को भारत ने 45 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हराकर इंग्लैंड दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज की है। बर्मिंगहम के एजबिस्टन में खेले गए मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों की संतुलित गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम 48वें ओवर में 258 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने सर्वाधिक 76 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि लियाम डॉसन ने 68 और बेन डकेट ने 43 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्ण और गुरनूर बरार ने 2-2 तथा जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट निकाला। 259 रन के जवाब में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही।

0: भारत के दोनों स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली, रोहित 11 और कोहली 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने श्रेयस अय्यर के साथ 101 रन की साझेदारी करते हुए टीम को वापस मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अय्यर 35 रन पर आउट हुए। अच्छे रंग में दिख रहे कप्तान गिल को क्रैम्प की समस्या के कारण 80 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से जाना पड़ा। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और छठे विकेट के लिए 105 गेंदों में 102 रन की अटूट साझेदारी की और टीम को आसान जीत दिलाई।
1: He does go over the top. He goes all the way for 6. Goes to a half century. And the two spin bowling all-rounders for India have seen him over the line. Akshar Patel and Washington Sundar.
0: सुंदर 63 गेंदों पर 52 रन और अक्षर पटेल 52 गेंदों में 57 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर, जोश टंग और सैम करन ने एक एक विकेट लिया। बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाने वाले अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए सुनते हैं इस परफॉर्मेंस पर अक्षर पटेल ने क्या कहा।
2: बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली जिस तरह के T20 सीरीज गए उसके बाद पहला विन, इस तरह का परफॉर्मेंस के बाद जब आता है तो आई थिंक बहुत ही यू नो सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम यही सोच रहे थे कि बस हम खेलते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचते कि उसको टारगेट करेगा, मैं उसको टारगेट करूंगा, क्योंकि जिस तरह की विकेट थी आई थिंक जब आप एक बार शॉट हो गए तो आपको वो फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम यही बात कर रहे थे।
0: अब श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा, जहां टीम की नजर इस मुकाबले को जीत कर श्रृंखला को अपने नाम करने की होगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
3: तो शायद कुछ मरहम लगा होगा उन हारों का जो आयरलैंड से मिली, उसके बाद इंग्लैंड से मिली एक शानदार जीत के साथ, और टीम की और खेल प्रेमियों की उम्मीदें भी यही होंगी कि कल कार्डिफ में भी ऐसा ही करिश्मा दोहराया जाए और श्रृंखला अपने हिस्से में की जाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में शानदार बल्लेबाजी का उपहार शुभमन गिल को ताजा जारी ICC रैंकिंग में मिला है। गिल एक दिवसीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं और वो पहले स्थान के खिलाड़ी डैरिल मिचेल से मात्र 11 अंक पीछे रह गए हैं, जबकि दूसरे स्थान की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर विराट कोहली और चौथे स्थान पर रोहित शर्मा हैं। और अगर टीमों की रैंकिंग की बात की जाए तो भारतीय टीम एक दिवसीय क्रिकेट में पहले स्थान पर है और T20 रैंकिंग में भारत को हार का खामियाजा भुगतना पड़ा है और भारतीय टीम अपना शीर्ष स्थान गंवा करके दूसरे स्थान पर आ गई है, जबकि फायदा अक्षर पटेल को भी हुआ है और वो 3 अंकों की छलांग लगा करके ऑलराउंडर्स की एक दिवसीय रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और अब रुख करते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता का, जहां एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज महिला वर्ग में 3 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। अंडर-19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग, प्राची ने 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर-23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
4: इंडोनेशिया के जकार्ता में खेली जा रही एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर-23 वर्ग में भारत की निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में जापान की कोरिन कोकुफू को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि नितिका चंद्र ने 60 किलोग्राम वर्ग, काजल ने 65 किलोग्राम वर्ग, मुस्कान ने 75 किलोग्राम वर्ग और प्रियंका ने 80 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में रजत पदक हासिल किए। इससे पहले तनु ने 51 किलोग्राम वर्ग, प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग, शिवानी ने 70 किलोग्राम वर्ग और नैना ने 80 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में कांस्य पदक जीते थे। अगर अंडर-19 वर्ग की बात की जाए तो 51 किलोग्राम वर्ग में भारत की चंद्रिका पुजारी ने उज्बेकिस्तान की नजोकत मर्दोनोवा को 5-0 से और 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची ने इंडोनेशिया की दीरा अर्तिका को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि गुंजन ने 45 और 48 किलोग्राम वर्ग, जॉयश्री ने 54 किलोग्राम वर्ग, चाहत ने 60 किलोग्राम वर्ग, अंशिका ने 75 किलोग्राम वर्ग, मेघा शियोकंद ने 80 किलोग्राम वर्ग और प्राची टोकस ने 81 किलोग्राम वर्ग से अधिक की कैटेगरी में रजत पदक भारत की झोली में डाले। पुरुष के फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे, जिसमें अंडर-23 में 3 भारतीय मुक्केबाज और अंडर-19 वर्ग में 2 भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए दाव आजमाएंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
3: तो जकार्ता से आए हुए ये परिणाम इशारा करते हैं कि भारतीय युवा मुक्केबाजों का भविष्य कितना उज्जवल है और किस दिशा में जा रहा है। और ये परिणाम अभी यहीं नहीं थमे हैं, कल और मुकाबले खेले जाएंगे जहां 5 भारतीय

0: पुरुष मुक्केबाजों की नजर स्वर्ण पदक पर होगी, जिसमें विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम वर्ग में स्पर्धा करेंगे, गंगा 55 किलोग्राम में और 65 किलोग्राम में वंशराज नजर आएंगे स्वर्ण पदक के लिए दाव आजमाते हुए, जबकि आदित्य अंडर 19 वर्ग में 55 किलोग्राम और शुभम राजपूत 90 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में पदक के लिए दाव आजमाएंगे। और अब रुक करते हैं बैडमिंटन का। जापान बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में भारत के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी को आज हार का सामना करना पड़ा, जबकि महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा भी अपने मुकाबले हार कर इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। लक्ष्य सेन को जापान के कोकी वतानबे ने 21-16, 21-14 से हराया, जबकि आयुष शेट्टी को थाईलैंड के कुनलावुत विदित्सन ने 21-19, 23-25, 21-15 से हराया। वहीं महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा को चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसन से 21-16, 16-21 और 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। अब भारत की जो मुख्य उम्मीदें हैं वो कल के मुकाबलों पर होंगी, जहां दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मैदान पर उतरेंगी और अपना प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी, जहां पे उनका सामना जो है वो हुआंग यून से होने वाला है। और मिक्स डबल्स जोड़ी में तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी कल अपना मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। तो भारत की पूरी उम्मीदें इस जोड़ी से और पीवी सिंधु से रहने वाली हैं कि ये भारतीय अभियान को किस तरह से आगे लेकर के जाते हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे इस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी दुनिया के खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारी ईमेल sports.can@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनुइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।

0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
2: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे

0: सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
1: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण

0: पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Center clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise in West Asia as US reimposes naval blockade on Iran amid exchange of fresh strikes between the two countries. 3 Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England at Atlanta in the US tonight for a place in the final. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the Cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. He informed that investment worth 4 lakh crore rupees is expected under Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
4: Us industry ko aur aage badhane ke liye
2: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. He said the scheme is aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition, and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub.
3: Today, Cabinet approved the mobile phone manufacturing scheme with a total outlay of 62,500 crore rupees over a period of 5 years. The scheme provides a wide range of incentives to promote domestic sourcing.

0: The under-23 division, Nisha won the gold medal in the 54-kilogram weight class. Neeti Chand, Kajal, Muskan and Priyanka won silver medals. In FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final match at Atlanta in the US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Earlier, Spain stormed into the final of the tournament. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Centre clears two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Three Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England tonight for a place in the final. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:16 हुए हैं, क्षमा करें 9:15 हुए हैं। चलिए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद मुख्य कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच, साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम देंगद्विक समा कल शाम 5:35 पर, फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक कल शाम 7:11 पर और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत रात्रि 8:00। जी हां श्रोताओं, तो यही थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2:00 अंग्रेजी में समाचार के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री तेंजन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री हेमंता स्वर्गिरी के साथ मैं हूं हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। समय रात्रि के 9:16 हुए हैं। श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दें।